0: मेहमान तो।
1: अरे तिवारी सर, आप गए नहीं? आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप?
2: ये मेढक, ये बतख और ये केला।
1: मेढक।

0: बच्चों बच्चों बच्चों, कैसी है पेंटिंग? देखिए देखो,
1: अति सुंदर सर,
2: फर्स्ट प्राइज सर।
3: खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा, मिलके छुड़ाओ सारे।